सेफ्टी क्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैंटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज, जी हाँ। उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5090 पर कॉल कीजिए। 905-456-2733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

मैं कृपा दारी आज पहर भरा दो स्वामी पूरण काल हमारी हर जियो तू सुख संपत राज राज ले हो पाई मेरे को रब आ गए अरदास जो मांगू सोई सोई पाऊं।

सगला सुख मिटाया। ताप रोग गए गुर बचने मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी पूरन पुरख विदाता रहा। आनंद विनोद मंगल गुरदाओ गुरु नानक भय दयाला। जय जय का

सुख सागर प्रभु विसरो नाही, मन चिंदियना फल पाई रहाओ। सतगुर पूरा ताप गवाया, अपनी कृपा धारी, पात हम प्रभु भय दयाला, दुख मिटिया सब परवान, सर्व निधान मंगल रस रूपा, हर का नाम अधारो, नानक पद राखी पन्ने सर, उधरिया सब संसार, मेरा सतगुरु रखवाला हुआ, दान कृपा सब हाथ मेरा दिया, हर गोविंद नवा निरुआ रहा, ताप गया प्रभु आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साथ संगत ते सब बल पाए, सतगुरु कै बल जाई।

जी अजंत सब तिसके किए, सोई संत सहाय अपने से बकिया मेरा थे पूरण भई बढ़ाए। पात्रम पूरा मेरा नाल गुर पूरा पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहा अन दिन नानक नाम ते आए।

सभी श्रोताओं का संसार में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। तो आपके लिए अब मौसम बहुत ही खिला हुआ है, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो अभी बच्चों को भी साल के महीने के आखिर में छुट्टियां हो जानी है, और जिनके बच्चे ग्रेजुएट करेंगे उनको ग्रेजुएशन होनी है, उनको बहुत बहुत सारी बधाई हो। और अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, या फिर आपने कभी किसी किस्म की भी आपको बढ़िया फर्नीचर चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बढ़िया टीवी चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ब्लॉक में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, उनकी स्पेशल देखिए। फिर फादर्स डे के लिए गिफ्ट खरीदना है तो बस अभी से ऑर्डर करके अपना ऑर्डर कीजिए। तो 905-799-0045-799-0045 पे आप इनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हैं। तो फादर्स डे के लिए अगर आपने सोने की गहने, सोने की चेन खरीदनी है, शादी एनिवर्सरी बर्थडे के लिए आपको गहने चाहिए, तो आपको जाना होगा अलमदीना ज्वेलर्स। अलमदीना ज्वेलर्स आपके लिए मौजूद है वाल्टन एयरपोर्ट रोड पे, और जानकारी के लिए, ऑर्डर बुक करने के लिए, फादर्स डे के लिए या शादी एनिवर्सरी बर्थडे किसी भी मौके के लिए, तो आप 905-600-0100 पर कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। अब अगर आपने मूवी करनी है तो आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिएगा, उनके कनाडा घर में आपको मदद करते हैं मूव होने में, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं, अपना ट्रक बुक करने के लिए आज ही कॉल कीजिए 416-524-7404-6704 पे आप एच मूवर्स को कॉल कर सकते हैं मूविंग के लिए, कहीं भी मूव करना है कनाडा भर में। और अब अगर आप कृष्णा वाटरलू गोल्फ में घर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो आप नसीब फ्रेंड को कॉल कर लीजिए 519-546-519-546-1260। तो आइए अब आपको एक बड़ा प्यारा सा गीत सुनाते हैं, पंजाबी का गीत सुनाते हैं आपको। और अब अगर आपने किसी किस्म की भी ट्रक रिपेयर करवानी है तो आप कॉल कर सकते हैं बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर, जो कि आपके लिए 1715 में मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप उनको 905-625-0055 कॉल कीजिए 905-625

मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अब आपने अगर किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना हो तो आप जाइएगा मास्टर कोलिजन डिपो लंदन के आसपास के इलाके में। अगर आप रहते हैं तो मास्टर कोलिजन डिपो अब लंदन में मौजूद है। तो अगर आपने किसी किस्म की भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप वहां पे उनको कॉल कर सकते हो। और ये जो उनका शोरूम है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। तो ये उनका जो गोर रोड पे लंदन में आप मास्टर कोलिजन डिपो की सेवाएं ले सकते हैं। किसी तरह की भी आपको सेवाएं लेनी हो तो आप वहाँ पे उनको कॉल करिएगा और हर तरह की सेवाएं वहाँ पे आपको मिलती हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए अब आपको एक और बढ़िया सा प्यारा सा गीत सुनाते हैं। तो ये जो आपके लिए गाना है ये मिस पूजा का है। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर आपने फ्रिज तो वाशर ड्रायर बढ़िया लेना है, टीवी बढ़िया लेना है, आउटडोर फर्नीचर, किचन की गैजेट्स, या फिर आपने बारबेक्यू बढ़िया लेना है, फादर्स डे के लिए गिफ्ट लेना है, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ब्लॉक में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव करने के लिए आपको आपकी पूरी मदद करते हैं। तो आपको कहीं भी आपको मूव होना है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो 416-524-604 तो आपने HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं मूव होने में और कनाडा भर में मूव होने में आपकी पूरी मदद करते हैं। मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है गोर रोड पे आपके लिए। आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा और वहां पे उनकी सेवाएं आप ले सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार।

0: की शरणाई जाति से
1: सिर्फ की क्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5333 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

जने जी जंत आपे राखी जमे कियो हटदार हर के चरण हृदय और तार सदा सदा प्रब सिमरी है भाई दुख किल बिख काटन हार रहा तिसकी सनी उबरा भाई जिन रचिया सब कोई करण कारण समरथ सो भाई सच्चा सच्ची सोए नानक प्रभु ते आई है भाई मन तन शीतल होए और मना तनवा संत हो हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहा सतगुरु पूरा चाप गवाया अपनी कृपा धारी पात्र हम प्रभ भय दयाला दुख मिटया सब परवान सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पद राखी बन्ने सर उधरिया सब संसार मेरा सतगुरु रखवाला हुआ दान कृपा सब हाथ मेरा किया पर गोविंद नवा निरुआ रहा ताप गया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साथ संगत ते सब पल पाए सतगुरु कै बल जाई।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: छह फुट दो इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
1: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
2: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, क्लोज टू कैनेडी एंड स्टील्स, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600.

0: रिपेयर करके, कॉल्स पे कॉल्स आके बता देते कि हमें साइड में रख दो। ये तो हुई खाली वेजिटेबल्स की बात। वैसे ही हमारे पास सब टाइप्स के फ्लावर्स है, एनुअल्स जो सीजन में लगाए जाते हैं कलर्स के लिए।
1: सो ज्योति मैं एक बात बोल दूं, आपकी बात सुनकर कोई भी बोलेगा ये तो हमारे पास भी यहाँ नर्सरी है उसमें भी पड़े हैं, मैं फर्क दसना किया। मैं ज्योति तो पूछ के फ्रंट यार्ड की फोटो लेके गया सी, मेरे राउंड अबाउट घर के मूहरे बनाया गोल धारा के चौंक मंगो दा
2: जी,
1: वो थोड़ा भरिया सी बाकी खाली सी। ज्योति ने मैंने प्लांट दिते
2: जी,
1: एक $40 का प्लांट दिता जिहड़ा कि इन्ना फैलना, उन्हें गोल धारे च अपने आप नूं गुड़ाई देने की जरूरत नहीं, अपने आप ही उन्हें गोल हो ही जाना।
2: हाँ जी,
1: ते उहदे आस पास फुल दिते मैनू। आपने कौन कौन से फ्लावर दिए थे जो हमने आगे लगाने हैं फ्रंट यार्ड में लगाने हैं?
0: हमने मैंने रोजेस दिए थे, डेजीज के डिफरेंट टाइप दिए थे आपको, और जो बुश दिया था वो तो एकदम यूनिक था, फायर क्रैकर बोलते उसको,
1: फायर क्रैकर था। एक ने सिर्फ चार रह गए ने
2: जी,
1: कई सौ आए सी ले जो कहंदी, मैं कहा भी मैं केड़े केड़े लावा, शी चूज एवरीथिंग ते मैं वो बाय किया
2: जी।
1: सो वो फ्रंट यार्ड दी फोटो मैं सारे नु पाऊंगा, क्योंकि ग्रीन वैली गार्डन सेंटर नु असीं इसलिए प्रमोट कर रहे हैं। फर्क की है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो बीज जड़े लेके उन्होंने लोकल इतने नैगराउन का लेक के 14 एकड़ के ग्रीन हाउस च लाया गया सीजन आने तो 5 महीने पहला।
2: हाँ जी,
1: पूरी देखभाल की गई, टैसट किए गए प्रॉपरली, टैसट करने तो बाद पनीरी तैयार हो गई। हूँ एक बाजारू पनीरी लोगों को बाजार च बिकती पई है, मेड इन चाइना ही है, वो कड़ा लिखा हों कुछ वो लिखा हों करेला, पर तैयार चाइना च होया हुआ
2: जी।
1: ये इंडिया वर्गा टेस्ट सब्जियां का, इंडिया दी सब्जियां। नंबर टू, लोग कहते कैनेडा च फुलां की खुशबू नहीं आती, ज्योति के ग्रीन हाउस च जायो फुलां की खुशबू आनी शुरू हो जूगी। नंबर तीन, लोग कहते यार फुल ला ले, ज्योति दरख्त भी दिंदी है तुहानू जिन्हां तों फ्रूट निकल लेने।
2: बिल्कुल,
1: पेड़ कौन कौन से है ज्योति?
0: हाँ जी, हमारे पास एप्पल है, पेयर है, प्लम है, चेरीज है, बाकी लैवेंडर के बड़े ट्रीज है, मेपल, रेड मेपल, वैरायटीज ऑफ ट्रीज अवेलेबल है, और सीडर्स के भी टाइप है जो एक्चुअली लाइक लोग मांग लाइक पूछते हैं कि हम ये जगह पर क्या ट्री प्लांट कर सकते हैं। जैसे कल एक लेडी आई, उसने भी पिक्चर ही लाया था उसका बैकयार्ड का, उसने पूछा ये कॉर्नर में मैं क्या लगाऊं, तो मैंने उसको सजेस्ट किया, उसने वो ट्री लगा के मुझे आज फोटो भी भेजी उसकी। सो आई एम रियली हैप्पी कि जो हम सजेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट को वो पसंद भी आ रहा है और लेके भी जा रहा है और क्वालिटी की तारीफ भी कर रहा है।
1: और ग्रीन वैली गार्डन सेंटर मैं दस दवा, दो लोकेशन ने, एक लोकेशन हैगी है मेफील्ड एंड मकवीन जिथे ग्रीन वैली ग्रोसरी स्टोर हैगा, ते ग्रीन वैली गार्डन सेंटर जिहड़ा हैगा वो दूसरी लोकेशन दे उत्ते आ, जिहड़ी कि लोकेशन है 2547 एम्बलटन। मैं पढ़िया नहीं गा, पेज खोलिया नहीं, मैंने याद हो गया 2547 एम्बलटन, जिहड़ी क्वीन स्ट्रीट है ब्रैम्पटन वाली।
2: हाँ जी,
1: ये मिसिसागा रोड तो बाद एम्बलटन बन जाती है, थोड़ी जी घूमती है एल शेप च, थोड़ी जी एल शेप च एम्बलटन, यानी कि क्वीन एंड जे तुसी स्टील तो आ रहे हो हैरीटेज रोड लैना, हैरीटेज रोड के उपर एमाजोन वाला का वेयरहाउस है जिथे पहला 3000 बंदा हायर किया, ग्रांटा खाधी गई रज के सब कुछ किया गया, मुड़के तो बाद मशीन लाती बंदे कटते
2: जी,
1: ते ओ हैरिटेज दे उत्ते एमाजोन दा वेयरहाउस टप दे लेफ्ट हैंड ते इन्हां दा आजूगा ग्रीन वैली गार्डन सेंटर, 1.5 एकड़ चा, सोहना वैदर आ, पहुंचो, फोन नंबर डायल करो 647-222-5601। कैम्ब्रिज तो आ रहे हो, लंडन तो आ रहे हो, किचनर वॉटलू वुडस्टॉक तो आ रहे हो, हैमिल्टन तो आ रहे हो तुसी, या तुसी नैगरा फॉल्स तो आ रहे हो, नैगरा फॉल्स भी अजे फुल नहीं होने जो फुल इन्हों को रखे हुए हैं। 647-222-5601 आपका फोन बजना चाहिए, अब शुरू हो जाना चाहिए। 647-222-5601। ज्योति जाने से पहले ये बताइए कितने के लोग आ चुके हैं आपके पास अब तक?
0: अभी तो पार्किंग में करीब करीब 9-10 गाड़ियां खड़ी है।
1: नहीं, टोटल पिछले एक वीक से हम ऐड चला रहे हैं 10 दिन से।
0: हम लोग अब 5 वीक्स हो गए हैं सो फार, और लाइक अगेन एवरी टाइम नया नया स्टॉक आ रहा है और कस्टमर्स की लाइन।
1: मैं ब्रिजी को पूछता हूँ हमेशा कितने लोग है, बोलता हजारों लोग आ गए, आपके पास 100 आ गए?
0: हाँ जी, हाँ जी, हजारों आ गए बोल सकते हो आप भी।
1: ठीक है, थैंक यू, मैं आपको दोबारा फिर लूंगा यहाँ पे एक बार। 647-222-5601
2: जी,
1: ग्रीन वैली गार्डन सेंटर गूगल ते पालना।
2: बिल्कुल,
1: दुनिया दा बूटा फुल लाने के में ने टेक्निक ते सारा कुछ ज्योति होना दी टीम दसूगी, एक्सपर्ट ने, ग्रीन हाउस एक्सपर्ट ने, सब्जियां के में लोने, किन्नी किन्नी दूर लोने, केड़ी केड़ी बेल किथे किथे लगू, किन्ने किन्ने बूटे एक बेल चो निकलणगे, एग्जैक्ट जानकारी

बाद एक बार फिर तो बहुत निघा स्वागत है। म्यूजिकल ब्रेक से छोटी छोटी ब्रेक्स आप जरूर लवेंगे क्योंकि प्रोग्राम दे विच तुहाडी पसंद दे सारे गाने चल रहे हैं, तो होपफुली तुसी सारे इंजॉय कर रहे होवोगे। तो तुसी ट्यून किया होया है देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो, मैं हाँ तुहाडी होस्ट मनप्रीत कौर तौर। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वालों एक मैसेज है तुहाडे सारे दे लई कि आपां एक चंगी कम्यूनिटी तां ही बना सकते हैं, कहिंदे कि जे आपां चंगे नेबर्स होईए है ना, तां नेबर्स आपां चंगे किवें बणांगे, तां कि आपां अपने जिहड़े आंढी गुआंढी ने उहनां नूं अपनी किसी भी एक्टिविटी तो कोई भी प्रॉब्लम ना होवे पहली गल तां। ते जेकर कोई तुसी अपने घरां दे विच वीकेंड्स ते सपोज है ना या वीकडेज दे विच भी कोई गैट टूगैदर करदे हो, कोई गैदरिंग करदे हो, शोर शराबा थोड़ा जिहा घट करो। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वाले कह रहे ने कि एक्सेसिव नॉइज़ नूं थोड़ा डाउन रखो, ते जिन्ने भी अपने साइडवॉक्स ने या बाइक लेनस ने उन्हां नूं पूरा क्लीयर रखो, ब्लॉक करके ना रखियो बिल्कुल भी। ते जेकर तुहाडे घरां दे विच वेस्ट वगैरह हुण ज़्यादा हो जाता गैदरिंग वगैरह करदे हो, अपने जिन्ना भी गारबेज हुंदा उहनूं इधर उधर सुट्टो ना बिल्कुल भी, ते उहनूं तुसीं प्रॉपरली अपने बिन्स दे विच डिस्पोज करो, इधर उधर डंप ना करो, चाहे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है चाहे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्लीनिनेस पूरी मेनटेन करके रखो। तो स्ट्रीट पार्किंग लिमिटेड की हुई है 3 घंटे के लिए, जो तुम कि गड्डी पार्क करते हो स्ट्रीट के उपर 3 घंटे तो ज़्यादा पार्क नहीं कर सकते, अदरवाइज टिकट मिल जानी है। तो रात के 2 बजे तो लैके सवेर के 6 बजे तक 2 AM to 6 AM तुसी स्ट्रीट पार्किंग नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हुण मना आ, तो ये भी तुसी जरूर ध्यान रखो, अदरवाइज तुहानू पता फाइनस ब्रैम्पटन सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने इनक्रीज़ किए हुए ने। ये छोटे छोटे सिंपल एक्शनस ने बट काफ़ी वड्डे रियल डिफरेंसिस क्रिएट कर सकते हैं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की साइट के उपर जाओ, तुसी एक देखोगे टाइटल स्प्रिंग समर एनफोर्समेंट रिमाइंडरस, ये तुसी पढ़ सकते हो पूरा प्रॉपर, तुहानू सारे बायलॉज जिन्हें भी हैगे नेगे वो तुहानू पूरा प्रॉपर इनफोरमेशन मिल जूगी। brampton.ca/bylaws तुसी गूगल के उपर सर्च करोगे तो तुहानू यह सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की साइट के उपर जाके स्प्रिंग समर एनफोर्समेंट रिमाइंडरस ने जड़े उहदे विच पूरी डिटेल तुसी पढ़ सकते हो। तो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के वलों ये मैसेज तुहाडे तक पहुँचाया जा रहा। 3:12 के कुछ सैकेंड हो गए हैं। स्टूडियो का नंबर 905-564-5444 905-564-6444 के उपर कॉल्स कर सकते हो। तो मैं तुहानू जानकारी दे दें कि जेकर तुसी अपने घरां दे विच डक्ट क्लीनिंग कराने होने करवाना चाहते हो तो अकाल डक्ट क्लीनिंग दे नाल गलबात करो। ये फर्स्ट एवर कंपनी है डक्ट क्लीनिंग की अपनी कम्यूनिटी की, जिड़ी कि पिछले 40 सालों तो तुहानू सर्विस दे रही है। 7 दिन ओपन रहिंदे ने, बहुत ही प्रोफेसनल डक्ट क्लीनिंग ये करते हैं, पूरी स्पैशलाइज्ड ने ये अपने प्रोफेशन दे विच। जे तुसी अपने एयर कंडीशनर्स या फर्नेसिस नू रिपेयर करवाना होवे या इंस्टॉल करवाना होवे तां वी तुसी इन्हां दे नाल कॉन्टैक्ट करो। जिहड़ी इह डक्ट क्लीनिंग करदे ने अप टू 3,000 square feet अनफिनिश्ड बेसमेंट, रेगुलर प्राइस $250 है, $250, बट जेकर तुसी ब्रैम्पटन या मिसिसागा दे विच रहिंदे हो तां देश परदेश रेडियो दी रेफरेंस दिओ, $140 दे विच अप टू 3,000 square feet अनफिनिश्ड बेसमेंट तुहाडे लई इह डक्ट क्लीनिंग करके जाणगे $140 दे विच। इह ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा दे कस्टमर्स दे लई है, अदरवाइज रेगुलर प्राइस $250 है, $250 ये तुसी सर्विस ले सकते हो अकाल डक्ट क्लीनिंग तो। हरमिंदर सिंह जी नूं कॉल करो, नंबर है 416-710-0662 416-710-0662 दे उपर तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अकाल डक्ट क्लीनिक दे नाल। नैक्सट फरमाइशी गाना बब्बू मान दी आवाज़ दे विच इंजॉय करो, सुंदरो देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो।

0: afternoon, welcome to Dave Tarla Show. आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा वादी उम्मीद करते हैं तुहाडा वीकेंड अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी कि अगले एक घंटे विच तुहाडे ढेर सारे डालर की बचत करके दईए। सब तो पहला सुल्तान जी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम टू द शो सर।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
0: सुल्तान जी। ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस ते बहुत लंबे किन्ने फरे हो गए इस काम च?
1: 39 ईयर।
0: लो जी ऑलमोस्ट 40 साल का इस बिजनेस चा। जिहड़ा पुराना बंदा हुंदा उहनूं इक तां नॉलेज पूरी हुंदी आ, इन एंड आउट दी पूरी नॉलेज आ। जिहड़े सेल्समैन रखणे आ, किहड़े रखणे आ, किन्हां नूं किहड़ी ट्रेनिंग देणी आ, हर एक शय इन्हां नूं पता है। लेकिन अज असी उस बारे नहीं गल करनी, अज एक्सपीरियंस 40 साल का हैगा, अज गल करनी आ टेलीविजन टेलीविजन ते टेलीविजन टेलीविजन ते।
1: ओदी रीजन ए आ जी के फीफा वर्ल्ड कप हो रहा, ते फीफा वर्ल्ड कप दे विच सैमसंग ने स्पोंसर कीता, ते सैमसंग चाहुंदा है कि मैक्सिमम बिग स्क्रीन टीवियां ते असी डिस्काउंट करिए ताकि कस्टमर्स जेड़े आ वड्डी स्क्रीन ते अपने घरां च बैठ के मैच देख सकन। और इहदे च एडवांटेज ये दिता जा रहा कि कोई 200 या 300 या 400 नहीं जी, 600 तो लाके 800 डालर का डिस्काउंट है जे 85 इंच तक टीवी लेंदे हो।
0: अच्छा
1: जे टीवी लेंदे जी 98 इंच या 100 इंच या 115 इंच ते ओदे च तकरीबन मोर देन 1000 डालर का डिस्काउंट है जेड़ा एस टाइम दिता जा रहा। जो मैं कैलकुलेट करदा 40% का डिस्काउंट बन जाता, समवेयर इट्स मोर देन 40%। 85 इंच का क्यू एल ई डी क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसैसर के नाल 85 इंच क्यू एल ई डी हाई एंड टेक्नोलॉजी है, क्लीयर क्रिस्टल पिक्चर क्वालिटी है, $2000 वाला 1299 सैमसंग ने 1299 एक्सक्लूसिव डील दिती है बोवेड एंड चंकूजी वाली लोकेशन ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस नू। ब्रैम्पटन अपलायंसिस डॉट कॉम साडी वैबसाइट तो तुसी डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी लै सकदे, ते वॉक इन कस्टमर लई एडिशनल गिफ्ट्स जिहड़े आ उह भी तुहाडा वेट कर रहे हैं। बिल्कुल 4 to 5 टीवी इन स्टॉक रह गए होंगे, जल्दी क्विक एक्ट करना है तुसी। बिग स्क्रीन टीवी नू जे होल्ड करना है मैक्सिमम डिस्काउंट दे नाल 1299 दा, अदरवाइज 1800 डालर तो घट अगे जाके टीवी नहीं मिलना।
0: 1299 दा टेलीविजन ले लो, 6 महीने पैसे देण दी लोड़ नहीं, कोई ब्याज कोई इंट्रस्ट नहीं लगना। जिस दिन तुसी टेलीविजन लैके गए घरे उस दिन तो यह पेमेंट सिस्टम चलना है। सो 6 महीने 1 सेंट देण दी लोड़ नहीं।
1: ते कदी सोचिया होएगा कि 55 इंच टीवी तुहानू सिर्फ 399 दा मिले?
0: हां जी, ना ये सुपने हुंदे सी।
1: 800 डालर दी प्राइस एज ऑफ टुडे भी जी।
0: अच्छा,
1: पर तुहानू 399 च 55 इंच मिल रहा। 65 इंच कदी सोचिया सी 699 दा मिले, एज ऑफ टुडे भी $1000 दी प्राइस है 699 दा मिल रहा। पर उन्नी देर ही मिलना जिन्नी देर स्टॉक अवेलेबल है, उस तो बाद इन्ने दा ही मिलना है, $1000 $900 दा ही मिलना है 65 इंच भी। पर आज दे दिन तुहानू 699 ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस तो मिलना है, और 699 तुसी चाहो 6 महीने च पे करो, कोई इंटरेस्ट नहीं है।
0: अच्छा, जेड़ा 6 महीने च पे करो, हो सारा महीने में थोड़ा थोड़ा करके?
1: हाँ जी, ईवन देखो भाजी गल ये है ना जी, तुसी $3000 तक की भी शॉपिंग करो ना।
0: हाँ जी, हाँ
1: जी। $500 महीना करके पे कर दो, 3000 पूरे हो गए।
0: सो जिन्हें भी शॉपिंग करे थोड़े थोड़े करके देने वो दे दो, कट्ठे देने वो तुम्हारी इच्छा है, कोई ब्याज नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं, चाहे महीने महीने दे दो चाहे 6 महीने च दे दो।
1: ईवन $2400 तक की भी शॉपिंग करो, $400 महीना करके दे दो, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए तो क्या कि बिग स्क्रीन टीवी $3500 वाला 98 इंच,
0: हाँ जी
1: देखो किन्ने कंज्यूमर दी आम बजट च आ गया, $3500 तो सिर्फ 1999 दा।
0: हाँ जी,
1: ते 1999 भी 6 महीने च पे करना, थोड़े थोड़े करके पे कर दो।
0: तो बड़ा इजी इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है। तुसी 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस चक्कर लाओ, हाथ लागे दे लो। जेहड़े टीवी या टेलीविजन तुसी दस रहे हो ये ऑलरेडी उते डिस्प्ले ते हैगे,
1: डिस्प्ले ते भी है जी, और राइट वे स्टॉक च भी अवेलेबल है। 48 आवर च तुहाडी डिलीवरी स्कैजुअल हो जाएगी, बिल्कुल फ्री डिलीवरी है। बल्कि साडियां डिलीवरियां जिहड़ियां हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक, नियाग्रा फॉल, वेलेंड एरिए ऑलरेडी जा रही है। अगर तुसी राइट वे डिसीजन लेंदे हो तो तुहानू 48 आवर च डिलीवरी जिहड़ी है इस एंड ते भी मिल जाएगी। ईवन क्योंकि हैमिल्टन वाले पासे भी जाना है, तो मिल्टन ਅਤੇ ਓਕਵਿਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਓਕਵਿਲ, ਮਿਲਟਨ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਸਟੋਨੀ ਕ੍ਰੀਕ, ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ, ਵੈਲੈਂਡ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੈਜੂਅਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 905-450-2828 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ, ਇਹ ਵਨ ਵਰਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੇਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੇਲ ਦਾ ਆਈਕੋਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਆਈਟਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ, ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ।
0: ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬੱਚਤ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ, 801 ਬੋਵੇਡ ਡਰਾਈਵ ਵੈਸਟ, ਜਸਟ ਈਸਟ ਆਫ ਚੰਕੂਜ਼ੀ ਔਨ ਬੋਵੇਡ ਹੈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ, 905-450-2828, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਪਲਾਈਸਿਸ .com। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਾਕ ਇਨ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 905-450-2828, 905-450-2828।

0: AM530.ca. This is AM530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca.
1: संगीत रुदे खुराक है,
2: आत्मा दी आवाज है,
1: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है।
1: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है,
1: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
1: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज।

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम अर्ज है। आज आपके दिलों पर मोहब्बत भरी दस्तक देकर थोड़ा सा मदहोशी के आलम में ले जाने के लिए शेरो शायरी से लबरेज गजलों का एक मुख्तलिफ सिलसिला लेकर हाजिर हूं, जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां। समीन, गम और खुशी, ये जिंदगी के वो दो पहलू हैं जो धूप और छांव के साथ साथ जिंदगी के सफर के साथ हमेशा चलते रहते हैं। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गम से यारो सामना एक बार होना चाहिए, मुश्किलों से भी कभी दो चार होना चाहिए। मानता हूं है जरूरी काफिया वजनो बहर, मानता हूं है जरूरी काफिया वजनो बहर, सोच का भी तो जरा थोड़ा सा विस्तार होना चाहिए। गम से यारो सामना एक बार होना चाहिए।

समीन चलते हैं कहकशां के उस दौर में, सुखनवरी के उस पार, जिसे बहुत ही उम्दा आवाज के साथ नवाजा है जगजीत सिंह ने। इस गजल से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे खाली मकान कहिए वो कोई घर नहीं होता, कि जिस घर में मोहब्बत ना हो उसका एहतराम नहीं होता, जो दिल को ठेस पहुंचाए ना हो इंसानियत जिसमें, वो कुछ भी हो मगर यारो कभी शायर नहीं होता। तो शायर उसे कहते हैं जो अपनी कलम की एक बूंद से समंदर लिख देता है। तो आइए कुछ ऐसी ही गजल में आपको डुबोने के लिए एक बहुत ही उम्दा आवाज, जिसे जग को जीतने वाली आवाज कहते हैं, जगजीत सिंह की आवाज।